0: नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयैरवौ मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. इट इज नॉट इन द सेलेस्टियल अबोर्ड वैकुंठ नॉर इन द हार्ट्स ऑफ ग्रेट सेजेस बट एनीवेयर योर डिवोटीज सिंग योर नेम दैट इज वेयर यू रिसाइड.
1: On behalf of the Hindu Temple of Kansas City, I would like to invite you all to join us in celebrating the Rama Navami festival. Let us now join the Nagara Sankirtan.